0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो भाई, मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू किया जाए। और आप सभी श्रोताओं की चिट्ठियां आई हैं। नागपुर जिला पाटन सावंगी से गजानन लिखार, मनोज लिखार और संचना लिखार, महमूद आरिफ, आरिफ फातिमा, एम एच शरीफ, आरिफ हुसैन और साथियों की चिट्ठी रामना हल्ली बेंगलोर से आई है। और ये जो चिट्ठी है, मौजे गोवर्धन जिला वाशिम से रविंद्र पवार, मीना पवार और श्रीकांत की है। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन और महेंद्र जैन की चिट्ठी। कनेरा मोहल्ला पटियाले से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश। और इसके अलावा हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन, न्यूटन चिखली, परासिया, छिंदवाड़ा से अनिल वाघ, संगीता वाघ, रविंद्र वाघ, वंदना वाघ, अंकेश वाघ, अनुतेश वाघ और ऋतिक वाघ की फरमाइश पर ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार, गुलजार, राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम आंधी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

विविध भारती पर आप मन चाहे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और जी हाँ बिल्कुल सही झलक सुनाई दी आपको, यही गाना आगे बजने वाला है। लेकिन पहले उन श्रोताओं के नाम तो आपको बता दें जिनकी चिट्ठियां हमें मिली हैं। पुणे से पंकज वडोदे, आर्या, प्रियंका, वीटी वडोदे और चंद्र प्रभा वडोदे, और ये चिट्ठी अलंकार मार्केट देवा से मकबूल हुसैन बोहरा, मुस्तफा हुसैन और नजमुद्दीन की है। बाबू रामानंद, बीना आनंद और खुशी आनंद ने नंदग्राम गाजियाबाद से हमें खत लिखा है। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया और प्यारे बाबू, और गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज और प्रमोद, आनंद रत्नानी, अजय, रेखा रत्नानी, अभय, भाग्या और मीरा रत्नानी ने नर्मदापुरम से इस गाने की फरमाइश भेजी। सुनते हैं हीरांझा फिल्म का गाना।

अगले गाने के लिए आप सभी की फरमाइश आई हैं। छत्तीसगढ़ बेमित्रा जिला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, सुनील कुमार, वीरेंद्र सारथी, रुद्र कुमार और ब्रिज कांत सारथी। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहू, रंजीत कौर मन्नत, गुरकीरत और गुरुशब्द सिंह राहुल। आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हरिया बाजार पूर्णिया से दिलीप कुमार सेंचुरी, बिमला रानी सेंचुरी, शिम्पी रानी साह, सुरेश लाल साह और अमित राजा। और ये फरमाइश आई है कर्नाटक बेंगलोर से मेनका नतारा की। इसके अलावा जी यही एक नाम है और अनीता, प्रीति, येसु और निसार की फरमाइश है। और कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन और दीपक जैन की लुधियाना पंजाब से फरमाइश हमें मिली है। इसके अलावा एक और चिट्ठी, और वो चिट्ठी भेजी है पूरे बाकड़े परिवार ने, जिसमें पवन कुमार, ज्योति ताई, संतोष राव बाकड़े शामिल हैं अकोला से। और ये है आपकी पसंद का गाना, फिल्म का नाम है अनजाना।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। मनचाही गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगली फरमाइश है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनकर, रेणु जीनकर, अजय प्रिंस और कुलदीप की, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, स्वीटी बेबी प्रियांशी, कस्बा हरदुआगंज अलीगढ़ से मुन्ना खान अंसारी, शहीद अहमद, नफीस अंसारी, अनाविया अजान और अयान, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, रहीम, मुन्ना, महीन, फातिमा, अदीब, दानिश, आसिफ, जोहरान शेख, मालवा मिल कंपाउंड इंदौर से प्रमिंद्र कुशवाहा, कैलाश कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, मंजू चौहान और कामिनी चौहान। कलाकार फिल्म का गाना, इंदीपर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज, किशोर कुमार की आवाज़।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सभी की फरमाइश है। महादेव डोंगरे राधा नगरी कोल्हापुर से ये श्रोता संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके साथी घंटाघर चौक खंडवा के श्रोता हैं। काटोल नागपुर से सुरेश मलमकार, श्रीमती रजनी मलमकार, ये फरमाइश बीड शहर से रंजीत कुमार, नामदेव थोरात, रितेश, आकाश, रंजना, रश्मि और गबरू, पहलवान की महेंद्र सटकरकडे, विजया सरकटे और मिलिंद वरुण जौल का से और वर्धा से दिलीप खैर का, शोभा रविंद्र सारिका और स्वरा।

नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक जैसी करनी वैसी भरनी। लेखक रोमी शिराज, निर्देशक मुद्रा राक्षस।

0: सुभद्रा सुभद्रा,
1: ये मकान मालिक तो कुछ करता नहीं, इतने दिन से कहा जा रहा है, छत तक ठीक नहीं करवाई। अब देखो, ये देखो, जगह जगह से टपक रही है।
0: अरे मैं कहता हूँ, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? शाम को जो चाट खाई थी, लगता है बहुत खराब थी। खाकर और तबीयत खराब हो गई।
1: तुम्हारी तो तबीयत ही खराब रहती है।
0: अरे ऊपर कुछ ऐसी आवाज हुई जैसे कोई कूदा हो।
1: अरे तेज हवा की वजह से कुछ गिर गया होगा।
0: हाँ?
1: तुम भी बस बुढ़ापे में लगता है ज्यादा सुनने लगे हो।
0: क्या क्या क्या, अरे अरे अरे जी जी जी जी, क्या बात हुई है? क्या बात हुई है? मैं बूढ़ा कब से हो गया जी है? कब बूढ़ा हुआ मैं? कौन आ गया?
2: कौन? जीवनलाल जी यहीं रहते हैं क्या?
3: अरे भाई दरवाजा खोलिए।
0: कौन है? देखो तो जरा।
2: कौन है?
0: अरे पुलिस?
2: जीवनलाल जी आप ही हैं?
3: हाँ यही है जीवनलाल जी। वे बाबा, बहुत गंडगोल हो गया है। तुम्हारा जो फादर था ना,
0: हाँ?
3: वो हमारा पागल खाने में सुसाइड कर लिया।
0: क्या?
3: ये इंस्पेक्टर साहब बोलता है उसका लाश को आइडेंटिफाई करना है। हाँ? अभी चलना है।
0: अच्छा अच्छा, चलता हूँ, जरा कपड़े पहन लूँ, अभी आया।
1: बात क्या है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं?
0: पागल खाने से इंस्पेक्टर साहब खबर लाए हैं।
1: पागल खाने से क्या?
0: पिताजी ने आत्महत्या कर ली है।
1: आत्महत्या?
0: हाँ।
1: जब तक जिंदा थे तब तक तो हमारे लिए मुसीबत थे ही, अब मर कर भी चैन नहीं लेने देंगे।
0: अरे ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। लाओ देखो मेरा छाता कहाँ रखा है, लाओ जरा।
1: अरे अरे, इस आंधी तूफान में कहाँ निकले जा रहे हो? कल सुबह चले जाना।
0: अरे बेकार की बातें मत करो, अभी जाना होगा मुझे, इंस्पेक्टर साहब लेने आए हैं मुझे।
1: लो अब उनकी वजह से द्वारे पुलिस आकर भी खड़ी हो गई।
0: बकबक बंद करो, देखो भाई छाता कहाँ रखा है, और सुनो कुछ पैसे भी दे देना। मेरा कुर्ता कहाँ रख छोड़ा है?
1: कुर्सी के पीछे टंगा तो है।
0: हाँ हाँ,
1: ये लीजिए।
0: हाँ हाँ, अच्छा सुनो मैं चलता हूँ, वो गुड्डू के हाथ अपने देवर को भी खबर भिजवा देना।

0: आइए, इस तरफ से आइए
1: जी। वेरी सैड। वो कल दोपहर से ही गायब था, आज पागलखाना का पीछा का कुआं से उनका लाश को निकला गया। हाँ, शायद वो कुआं में कूद कर ही उन्होंने जान दे दिया। हाँ, ओ ना अंदर है। ओरे बाबा, तुम्हारा फादर, माय गॉड, अजीब मैन था, माय गॉड, कल से गायब, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, माय गॉड, पता नहीं कब कुआं में गिर गया।
2: कुएं में कूद गया? अरे डॉक्टर साहब, आपको अपने रोगियों का ख्याल तो रखना चाहिए।
1: अरे बाबा, की रकम बात करता है तुम, हा? हम सभी का पुआ ख्याल रखता है, खाना कपड़ा।
2: हाँ, सब जानता हूँ, खाना कपड़ा। अरे इस तरह का खाना तो शायद जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे, और कपड़ा, शायद ही किसी मानसिक रोगी को कपड़े पहने देखा हो हमने।
1: माय गॉड, जब पागल लोग अपना कपड़ा फाड़ देगा तो कोई कितना बार पहनाएगा।
2: अरे डॉक्टर साहब, आपके पास तो हर चीज का जवाब हाजिर है।
1: जीवनलाल बाबू, ये सब बात तो होता रहेगा, पहले आप डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप चलिए, हम कल सुबह इनको थाने भेज देगा।
0: अच्छा।
2: कितनी बदबू है यहाँ।
1: देखिए, इनको पहचानता है?
2: जी जी, यही है, यही मेरे पिताजी हैं। इनका ये शरीर इतना फूल कैसे गया?
1: तुम्हारा फादर, माय गॉड, ऐसा पागल तो हमने अपना लाइफ में कभी नहीं देखा। कभी बोलता हम पागल नहीं, कभी बोलता हम पागल है। कई बार पांच पांच दिन खाना नहीं खाता, और कभी जितना दो बोलता और लाओ, नहीं देने से सब कुछ तोड़ता फोड़ता। ओ ओ, देखो वो खिड़की का ग्लास सब उसी ने तोड़ा, मना करा तो हम पर अंडा खींच कर मारा। He was a different kind of a lunatic।
3: मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे बेटा को घर आकर दीजिए, उन्होंने मुझे यहाँ बंद कराया है, मैं पागल नहीं हूँ।
1: ओए बाबा, ये यहाँ कहाँ से आ गया है? तुम उधर चलो, उधर चलो तुम।
3: मैं पागल नहीं,
1: इधर आ जाओ, तुमका मुद्दा है।
3: पागल नहीं हूँ,
1: चलो बाहर जाओ।
2: डॉक्टर साहब, ये कौन है?
1: पागल है, इसका लड़का लोग छोड़ गया था।
2: हाँ, लड़का लोग छोड़ गया था।
1: हाँ,
2: लेकिन देखने से तो पागल नहीं लगता।
1: हाँ, नहीं लगता, पर हाय, ठीक आपका फादर की तरह तो नहीं लगता, पर हाय।
2: लेकिन मेरे पिताजी तो पागल थे ना, वो तो पागल थे। हाँ,
3: मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मेरे बेटे को पकड़ो।
1: अब आप घर जाइए, समझा? बारिश भी थम गया है ना, और कल सुबह थाने में पहुंच जाइएगा। हाँ
2: जी, खुश बाबू, आप ऐसा करिए, आप जाइए, मैं थोड़ी देर यही पिताजी के पास बैठूंगा।
1: अरे बाबा, यहाँ बैठेगा? ठीक है, तो तुम बैठो, हम फिर जाता है।
2: पिताजी, ये आपने क्या कर डाला आपने पिताजी?

0: पिताजी, पिताजी, ये आपने क्या कर डाला?
1: क्यों, क्या हुआ?
0: इतनी मुश्किल से प्रॉपर्टी डीलर ने दो लोगों को राजी किया था, वो आए और आपने उनसे बात तक नहीं की।
2: मुझे नहीं बेचना है अपना मकान। जानते हो कितनी यादें जुड़ी हैं इस घर से।
0: 40,000 में खरीदे इस टूटे फूटे मकान के 15 लाख रुपए देने को तैयार हैं होटल वाले।
2: 50 लाख भी अगर दें तब भी नहीं बेचूंगा, और फिर इस उम्र में 15 लाख लेकर करूंगा क्या मैं?
0: पिताजी, मेरा नहीं तो कम से कम अपने पोतों का तो ख्याल कीजिए आप।
2: उनका ख्याल तुम करो जीवन, वो तुम्हारे बेटे हैं।
0: पिताजी, आप कुछ समझिए तो सही।
2: क्या समझूं, क्या समझूं मैं?
0: 15 लाख में इस मकान को बेचकर किराए का मकान ले लीजिए, कुछ पैसा बैंक में डाल दीजिए, और
2: क्या?
0: और फिर पिताजी, मुझे भी तो नए सिरे से अपना बिजनेस जमाना है, कुछ पैसा मुझे भी दे दीजिएगा, भले ही उधार दे दीजिए।
2: अपने रिटायरमेंट के पैसे से 30,000 मैंने दिए हैं तुम दोनों भाइयों को।
0: 30,000? अरे 30,000 में तो पिताजी बाहर एक छींका भी नहीं आता है।
2: होश में रह के बात करो जीवन।
0: होश में तो पिताजी आप नहीं हैं। मैं चाहूं तो कानूनन अपना हिस्सा ले सकता हूं आपसे।
2: क्या? तो फिर कान खोल कर सुन लो जीवन, मैं ये मकान नहीं बेचूंगा। और यही कह देना छोटे से भी, ज्यादा बहस की तो सारा मकान किसी संस्था को दान कर दूंगा।
0: अरे अरे अरे अरे, आप तो काफी लंबी सोच के बैठे हैं पिताजी। मैं भी देखता हूं आपके सपने कैसे पूरे होते हैं।
2: क्या मतलब, क्या चाहते हो तुम?
0: आग लगाना चाहता हूं इस घर को। यही चाहते ना, तो लीजिए, ये रही माचे।
2: जीवन, पागल हो गया तुम?
0: हाँ हाँ,
2: बिल्कुल पागल हो
0: गया हूं मैं। पागल, मकान बेच कर दो मुझे पैसे, वरना रोक कर तुम अभी इस कबाब खाने को। मैं
2: बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ छोड़ माचिस को।
0: नहीं,
2: मैं कहता हूँ माचिस मुझे
0: नहीं छोड़ूंगा।
2: माचिस
0: नहीं छोड़ूंगा, आग लगा दूंगा इस घर को। जो चीज मेरी नहीं है वो फिर किसी की भी नहीं हो सकती।
2: नीच बेहुदे बाप से हाथापाई करता है, छोड़ माचिस मैं कहता हूँ।
0: पकड़ो, लो पकड़ो ये माचिस, काम आएगी तुम्हारे कभी।
2: हे भगवान, इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था मैंने तुम दोनों को।
0: अरे इस बात की क्यों धौस मारते हैं आप? कौन बाप नहीं पढ़ाता लिखाता अपनी औलादों को?
2: इस तरह की औलाद से तो बे औलाद ही होना ठीक था। पता नहीं मेरे किस जन्म का पाप हो तुम दोनों भाई।
0: क्या पता कौन किसका पाप है। अरे मेरा मतलब है, अंजनी को देखिए, नई फैक्ट्री के लिए 7 लाख रुपया दिया है उसके बाप ने उसे।
2: अंजनी, अंजनी जैसे अगर तुम होते ना जीवन, तो 70 लाख का इंतजाम करता मैं तुम्हारे लिए।
0: पता नहीं क्या जिद है आपकी। देखिए पिताजी, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये मकान आपको बेचना है या नहीं?
2: एक ही जवाब तुम कितनी बार सुनोगे जीवन?
0: ठीक है, तो मैं भी आपकी जिद तोड़वा करके ही दम लूंगा।
2: हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो जीवन, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुमको, और ये मकान भी किसी संस्था को दान कर दूंगा। कान खोल कर सुन लो, और ना सुन सको तो निकल जाओ इस घर से।
3: अरे पिताजी, क्या हो गया?
2: अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अपने भाई के साथ बैठकर फैसला कर लो, अगर इस घर में रहना है तो शांति से रहो, वरना निकल जाओ तुम भी। और ये भी, मैं शाम तक वापस आऊंगा।
3: अरे क्या बात हो गई भैया?
0: अरे वही उनकी पुरानी जिद, घर नहीं बेचेंगे।
3: ओ, तो क्या बात ज्यादा बढ़ गई थी?
0: अरे ज्यादा, ये तो कहो संपत मैं ही अपने पर काबू किए था, वरना आज तो
3: इस तरह काम नहीं चलेगा भैया। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दुकान खरीदने के लिए मेरी भी बात चल रही है विवेक नगर में। मेन मार्केट में ही दुकान है और 3 लाख रुपया पगड़ी मांग रहा है। अगर ये मकान बिक जाए तो मजा आ जाए। वो होटल वाले आए थे?
0: अरे आए थे, 15 लाख रुपए दे रहे थे।
3: 15 लाख?
0: फिर जी, बात ही नहीं की इस बुढ़ो तुम्हारे बाप ने।
3: आखिर क्यों?
0: नहीं बेचेंगे। अरे हम सबकी कब्र जो बननी है यहाँ।
3: 15 लाख? तब तो मैं वो कोनी वाली बड़ी दुकान भी ले सकता हूँ। 4.5 लाख रुपए पगड़ी है उसकी। ओफो, इस समय पता नहीं कौन आ गया। कौन है भाई?
4: अरे भाई मैं हूँ अवधेश।
3: पता नहीं कहाँ से आ मरा ये।
0: सुनो, पैसे वैसे उधार मांगे तो मना कर देना।
3: अरे पहले पिछला उधार चुकाए तो।
4: अरे क्या हो रहा दोस्तों, बड़ा मुंह लटकाए बैठे हो।
5: भाभी जी कहाँ?
0: भाभी तुम्हारी बाजार तक गई हैं।
4: बड़े दुखी नजर आ रहे हो,
5: क्या हुआ?
0: अब क्या बताएं यार अवधेश, हम दोनों को पैसे की जरूरत है। पिताजी से मकान बेचने को जब भी कहते हैं मानते ही नहीं। बस आज इसी बात को लेकर काफी बकझक भी हो गई। आज तो उन्होंने हम दोनों को घर से निकल जाने की भी धमकी दी है। समझ में नहीं आता यार क्या करें। धमका रहे हैं कि ये मकान किसी संस्था को दान कर देंगे।
4: लो यार पान खाओ। तब तो ऐसा करो, एक संस्था तुम लोग भी खोल डालो।
3: देखो आदेश, मजाक मत करो।
0: अच्छा एक बात बताओ, पिताजी के रहते क्या हम लोग इस मकान को बेच सकते हैं?
4: जब तक वो जिंदा हैं तब तक तो नहीं, मेरा मतलब है उनके रहते।
0: अरे यार उन्हें अभी क्या होने वाला है, इतनी दूर की तो फिर बेकार ही की सोचना।
3: बताओ भला, इतना पैसा पास में है फिर भी जैसे नहीं है।
0: अरे जी तो करता है जबरदस्ती उनसे मकान अपने नाम लिखवा कर बेच डाला।
4: अगर इस तरीके की मूर्खताएं सोचनी है तो मैं चलता हूँ यहाँ।
3: अरे भाई तुम तो, भाई तुम ही कुछ अकल की बात बोलो ना।
4: भाई तरीका तो मेरी खुराफाती खोपड़ी में है, पर जरा मुश्किल है।
3: असंभव तो नहीं है?
4: कदापि नहीं बालकों, कदापि नहीं। वो नवजोत चिकित्सा केंद्र का नाम सुना?
6: वो नवजोत चिकित्सा, अच्छा अच्छा वो पागलों वाला अस्पताल। अरे वहाँ जहाँ वो दो तीन बार छापा भी पड़ चुका है।
4: और उसका आर्डन तो सरकारी धन दुरुपयोग में पिछले साल गिरफ्तार होते होते बचा था। तू ठीक है ना?
3: ठीक, मगर ये पागल खाने का क्या चक्कर है देश बाबू?
4: देखो भाई, अगर तुम्हारे पिता को पागल करार करके इस पागल खाने में बंद करवा दिया जाए।
0: अम्मा क्या बच्चों जैसी बातें करते हो यार, एक अच्छे खासे आदमी को पागल खाने में भर्ती कैसे करवा सकते हैं?
4: एक आधे पागल को तो भर्ती करवाया ही जा सकता है ना।
3: अरे यार क्या पहेलियां बुझा रहे हो, सीधी तरह ये बताओ ना कि कैसे संभव होगा।
4: देखो अपने पिता को रोज थोड़ा थोड़ा वो चूर्ण देना जो मैं बताऊंगा।
3: कहाँ चुके वो ये चूर्ण?
4: अरे खाना तो खाएंगे, बस उसी में चुटकी भर मिलाकर दे देना, मगर खिलाना जरा प्यार से। अब फिर चमत्कार देखना, धीमे धीमे वो शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कमजोर हो जाएंगे।
3: क्या?
4: और उसके बाद ही उन्हें पागल खाने में भर्ती करा दिया जाएगा।
3: लेकिन अवधेश पागल खाने में तो काफी तकलीफ रहेगी उन्हें।
0: और क्या?
4: अरे हर महीने कुछ पैसे मुझे दे दिया करना, मैं उन्हें दे आया करूंगा, कोई कष्ट नहीं होने पाएगा उन्हें।
3: लेकिन मकान तो फिर भी पिताजी के ही नाम रहेगा ना।
0: और क्या,
4: एक दो कागजों में उनका अंगूठा लगवा लेंगे, नहीं काम बना तो दो तीन जाली कागज मैं बनवा दूंगा।
3: मगर नवजोति वाले उन्हें पागल कैसे मानेंगे?
4: तुम दोनों यार आते तो बेवकूफों की श्रेणी में ही हो। मैं तुम लोगों को एक बात पहले से साफ कर दूं कि ये फार्मूला अंधेरे में चलाएगा तीर जैसा है, और ये तीर निशाने पर लगेगा या नहीं इसकी 50-50% उम्मीद ही रखो। हाँ वैसे तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नवजोत में तमाम लोग छुटकारा पाने के लिए अपने पिता से लेकर दूसरी शादी के चक्कर में अपनी पत्नी तक को भर्ती करवा चुके हैं।
3: अच्छा? मगर अवधेश इसकी जांच भी तो कभी हो सकती है।
4: एक अच्छा भला आदमी साल भर इस कैद खाने में रह ले तो पागल तो हो ही जाएगा। अब वैसे तुम लोग चाहो तो अपने पिता के मरने का इंतजार कर लो 20-25 साल या।
0: अरे नहीं नहीं भाई, अब तो लगता है 20-25 साल तक भीख मांग करके ही गुजारा करना ही पड़ेगा।
3: मेरे ख्याल से अवधेश की बात ठीक ही है भैया, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना तो पड़ेगा ना।
4: अब पिताजी जैसी पुरानी चीज खोकर अफसोस ही क्या होगा।
0: पिताजी, पिताजी क्या कर डाला आपने, क्या किया पिताजी?
7: अरे झूललाल बाबू अभी गया नहीं आप हैं? यहीं बैठा है।
0: जाता हूँ डॉक्टर साहब, जाता हूँ।
8: बड़ी देर कर दी आपने आने में, संपत भैया 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं आपका।
0: संपत,
9: नमस्ते भैया।
0: नमस्ते नमस्ते, बड़े कमजोर नजर आ रहे हो।
9: अब हम पोड़े हो गए भैया, फिर पास ऐसा है ही क्या जो खुश रखे, स्वस्थ रखे।
0: पिताजी के बारे में पता चला तुम्हें?
9: पता चला, ये तो होना ही था एक दिन।
0: एक नई मुसीबत भी तो खड़ी हो गई
9: जी।
0: पुलिस सारी बातों की जांच करेगी, तुमको तो पता ही है, उनको पागल सिद्ध करने वाले कागज भी तो जाली ही थे। अवधेश ने जिससे बनवाए थे वो डॉक्टर ही कहाँ था, शायद कोई कंपाउंडर वगैरह था।
9: यानी एक और मुसीबत।
0: हाँ, एक और मतलब?
9: अब आपसे क्या छुपाना भैया, मेरे लड़कों ने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया।
0: अरे अरे, लेकिन लेकिन संपत, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ?
9: क्या बताऊं, मैं आपसे सब छुपाए रहा भैया। मैंने अपने लड़कों पर भरोसा करके उन्हें सारा पैसा दे दिया, दुकान उनके नाम कर दिया, और पैसा पाते उनकी आंखें पलट गईं। रोज ही रोज मेरा अपमान होता है, घर से जाने के लिए कहा जाता है, जी तो करता है आत्महत्या कर लूं।
0: लेकिन लेकिन पिताजी वाला मकान बेचने पर तो 7.5 लाख रुपए मिले थे तुम्हें।
9: मिले थे भैया, ज्यादा पैसा होने पर खर्च भी कुछ ज्यादा होता है, फिर पैसा पिताजी की मेहनत का था, हमारी मेहनत का नहीं था, जो ज्यादा खर्च होने पर दर्द होता।
0: सच कहते हो संपत, वो रुपए तो ऐसा लगा मानो सड़क पर पड़े मिले हो। पिताजी की बात और थी, हर काम करने से पहले 20 बार सोचते थे, अब लगता है मकान न बेचने का उनका फैसला भी ठीक ही था। अब देखो, किराए के मकान में आए दिन मकान मालिक किराया बढ़ाता रहता है, न बढ़ाओ तो निकालने की धमकी ऊपर से।
9: अच्छा भैया, पुलिस जांच से अगर सारी बातों का खुलासा हो गया तो?
0: अरे नहीं नहीं, तब तो बुढ़ापा ही खराब होगा और जग हंसाई ऊपर से होगी।
9: खैर जो भी हो, मेरे से तो बेहतर स्थिति है आपकी।
0: हाँ ठीक कहते हो, फिलहाल तो बेहतर ही है, लड़की की शादी कर दी, लड़का है बस जरा चुप रहता है, घर आएगा आते ही अपने कमरे में घुस जाएगा, न किसी से बोलना न किसी से चालना।
9: अच्छा भैया, चलता हूँ, वो फिर आऊंगा।
0: अच्छा अच्छा,
9: वो भैया वो
0: हाँ? वो कुछ कहना चाहते हो
9: भैया? पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए मेरा मतलब है कि?
0: अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम कर दूंगा। और कुछ?
9: वो कहते तो ठीक नहीं लगता भैया, वैसे अगर मेरे लड़कों ने मुझे निकाल दिया तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ
8: सुनो
9: आकर...
8: जी बात सुनो जरा।
0: हाँ ठीक है भाई संपत, तुम्हारे रहने पर तो हमें कोई एतराज नहीं है, पर तुम तो जानते हो एक ही कमरा फालतू है और मेहमान है कि आते ही रहते हैं, अब अपनी सुविधा के लिए तुम मुझे तो तकलीफ में डालना पसंद नहीं करोगे ना?
9: क्या कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते भैया। अच्छा,
0: नमस्ते।
9: नमस्ते भाभी।
0: मुसीबत पर मुसीबत, अपने बच्चों से बनाकर रखेगा नहीं और यहाँ टिकने के लिए हाथ फैलाए हैं। एक तो पिताजी ने आत्महत्या करके और मुसीबत खड़ी कर दी, अगर जांच हुई तो बचना भी मुश्किल हो जाएगा।
8: अरे क्या अशुभ बोल रहे हो?
0: अरे ठीक ही कह रहा हूँ। ये ये छड़ी किसकी रखी है?
8: अवधेश की होगी, भूल गया होगा।
0: अवधेश? अवधेश कब आया था यहाँ?
8: कल जब आप काम पर गए थे वो तो आता ही तब है जब आप घर पर ना हो।
0: अरे लेकिन लेकिन वो आता क्यों है यहाँ?
8: क्या पता, अपने बेटे अनिल से पूछिए ना, उसी से मिलता है। शायद कोई बिजनेस करना चाहता है अनिल।
0: बिजनेस? बिजनेस क्या मतलब? बिजनेस और अवधेश के साथ? अरे पता है, सांप है वो, सांप सब कुछ बेच कर खा जाएगा।
8: क्यों, आपकी तो बहुत दोस्ती थी उससे, खाना पीना उठना बैठना।
0: अरे हाँ हाँ, जब थी तब थी। इसी बेवकूफ की बातों में आकर ही मैंने न जाने कितनी गलतियां, कितने पाप कर डाले।

0: रानी किस किस चीज का चूरन मिलाकर खिलवाते थे आप?
1: क्या बोली क्या बोली क्या बोली? बोलो बोलो, जोर से बोलो, चीखो चीखो, ताकि मोहल्ले वाले भी तो सुन ले।
2: अरे जी, क्या हुआ, क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हैं आप?
1: ये एक बात बताओ अनिल, ये अवधेश क्यों आता है यहाँ? क्या करना चाहते हो तुम उसके साथ? बिजनेस करना चाहते हो? पता है बेचकर खा जाएगा तुम्हें और तुम्हारे कपड़े भी।
2: मगर वो तो आपके दोस्त हैं।
1: कोई दोस्त नहीं है वो मेरा, समझे?
2: मगर क्या बिगाड़ा अवधेश चाचा ने?
1: उसकी वजह से ही तुम्हारे बाबा ने आत्महत्या कर ली।
2: बाबा ने? वो जो पागलखाने में बंद थे?
1: हाँ, वही
2: बाबा ने आत्महत्या की।
1: क्या बिजनेस समझा रहा था वो तुम्हें?
0: बेटे, तुम्हारे बाबा ने अवधेश की वजह से नहीं, इनकी वजह से आत्महत्या की है।
1: चुप कर।
2: पिताजी, क्या हो गया है आपको? माँ पर क्यों बिगड़ रहे हैं? बिजनेस में बुराई ही क्या है? आखिर मुझे अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है। महज 3 लाख से मेरा बिजनेस शुरू हो जाए।
1: अच्छा अच्छा, और ये 3 लाख रुपए तुझे देगा कौन?
2: अवधेश चाचा ने कहा है कि रुपया आपके पास है, आखिर आपने भी तो बाबा से पैसा लिया होगा।
1: मैंने क्या मतलब? और क्या बताया अवधेश ने तुझे? और क्या क्या बताया तुझे? कौन खोल कर सुन लो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें, समझे? एक कौड़ी भी नहीं दूंगा।
2: समझिए आप, आप अगर मुझे पैसे नहीं देंगे तो कानूनन अपना हक ले लूंगा मैं आपसे।
1: क्या कहा तुमने? कानूनन अपना हक लोगे? तो जाओ सड़क पर और मांगो कानून से अपना हक।
2: नहीं जाऊंगा, देखता हूं कौन निकालता है मुझे यहां से।
1: और ये हाथ में क्या है तुम्हारे?
2: हाथ में आपसे क्या मतलब? आप तो घर से निकाल रहे थे मुझे, वैसे ये आप ही के खाने के लिए लाया हूं मैं।
1: खाने के लिए? मेरे खाने के लिए? हो तो ये हो रहा है इस घर में, ये हो रहा है। अरे खुले आम क्यों नहीं खिला देते जहर? अरे गला घोट कर क्यों नहीं मार देते मुझे? खिलाओ जहर मुझे। खिलाओ।
2: ये खिलाओ। क्या अनशन बक रहे हैं आप? कौन क्या खिला रहा है आपको?
1: अरे मैं सब समझ गया हूँ तुम लोगों की चाल, मैं सब समझ गया हूँ। कौन खोल कर सुन लो, आज से अपने लिए खाना मैं खुद बनाऊंगा और तुम माँ बेटे को निकाल करके ही दम लूंगा। अवधेश के साथ मिलकर मेरी दौलत हड़पना चाहते हो, मुझे पागल खाने में भर्ती कराना चाहते हो? अरे कमबख्तों, शहर खिलाकर आधा तो मार ही दिया है मुझे।
0: ये क्या कह रहे हैं आप?
3: अरे भाई क्या हो रहा है?
2: देखिए ना चाचा, इनका तो लगता है दिमाग चल गया है, पागल हो गए हैं लगता है।
1: अरे मैं पागल? अरे मैं नहीं हूँ पागल, तुम सब हो पागल। नहीं हूँ मैं पागल। तुम अगर मुझे पागल खाने भेजोगे तो नहीं जाऊंगा मैं, हरगिज नहीं जाऊंगा वहां।
3: आपकी बात भी सही हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन सच तो बताएगा डॉक्टर ही। क्यों अनिल भतीजे?
1: क्या कहा? डॉक्टर? नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं।

जैसी करनी वैसी भरनी। अभी आपने रोमी शिराज का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे मुद्रा राक्षस और ये नाटक आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।